0: मैंने प्रिपेयर करके रखी है।
1: Hi, sorry, quick.
2: Truck 18 clear, PDO.
1: Truck 18, I have a question.